0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन पर, अमन मोहब्बत और आगाही की आवाज़। हमारी नशरियात उन्हें मुस्बत पैगाम पिलाए और माशरे को जोड़ने में हमारा साथ दे।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

आनंद जी बिल्कुल सुख सुख मिल मने दिशा मामा गोनू करा कजन्स करा सुख सुख मामा गोनू बिल्कुल मिल मने थी रुतव्या बसा बिल्कुल हसंदर इलाह होने और वैसा अबरे तरीका उजी

ओके जी कले कले सुख पे के वे कना छे राज भाई कले कले सुख मिनवाल वे छे राज भाई तो से संदर है बिल्कुल प्रिश धवाई नाम या खबर बगे कमाए आय हाय जावे तमे कना छे तो सब बात दा छे खबर सुमर डेरी वी जी और मुझे ठोले खबर छी दी कना ता ठोले सिलसिले आर वनडे उनी वी कना नो देवा छे खबर छी छी जस्ट डेरी वी जका कहू छी ब्या हाथ में शेयर क्लोज शीशा टाइम देर काम जी जका कना पदे मने देर भाषा मजरत ते ना गोणा जी दाख मिलेश की दबरे खज दवाला जी बैकग्राउंड करो सर और वे तो कचो रिजन को बिल्कुल दावियां जे सिफात कॉस्मेटिक जे सुमरा हां अगर प्रोडक्ट दे कना तब तुस्ता हर जाय के इंशाल्लाह मिला वीज जी टांग के बाहर जाय के मिला वीज जी लकी मरवत के मिला वीज जी नवरंग के मिला वीज जी बनू के मिला वीज जी टू मिल के मिला वीज जी करक जे सूरा इलाके दी आखिर के बखम मिला वीज जी।

ओके जी खरख मेन बाजार के जी सुस्त सिफात शोल चिसोन हा प्रोडक्ट से अब तो मिले वैसे जी बिल्कुल एड्रेसेस हाँ क्योंकि मैं एड्रेसेस शेयर करना ना शापुनो के हो मौजूद मौजूद अलावा हाँ जी बिल्कुल तुझे पछता नहीं कवल है जी जनरल स्टोर के या कस्टमर जिकिम शाह भी गाना आगे के बहुत उससे मिला जी इंशाल्लाह बिल्कुल करेक्ट सिटी के बतौर से मिला जी हाजी हान बहादुर सराय गुल हाजी मार्केट मेन बाजार करेक्ट सिटी के अब्दुल रहमान कॉस्मेटिक्स कमर्शियल प्लाजा मेन बाजार करेक्ट सिटी के अवल जान साफी उमरदीन प्लाजा मेन बाजार करेक्ट सिटी के जी बॉयज ग्रेड शॉपिंग सेंटर जी उमरदीन प्लाजा के जी मेन बाजार करेक्ट सिटी के तो मिला जी रहमानुल्लाह कॉस्मेटिक्स सराय जी देखो जी आर जी रहमानुल्लाह कॉस्मेटिक्स सराय दोस्ता जी जैसे फाटोल का दगा प्रोडक्ट मिला हुई दलशी और दगा शॉप से दाएगा ना दा बिल्कुल जी उमरदीन प्लाजा करेक्ट सिटी के दा नवाब बेकरी के आदिल बेकरी के जी और नवाब किड गैलरी के सिटी स्टोर के जी सिटी सुपरमार्केट के जी अयूब प्लाजा के जी दाटोल जेल चौक सी दी शाह सही दाएगा ना दाटोल जेल चौक है तुस्ता हाँ जैसे फाटोल आगे प्रोडक्ट मिला हुई दलशी जी और देना अलावा अली कॉस्मेटिक्स एंड गारमेंट मलक मसाहब गोल मार्केट में हेलो के तुस्ता आकर के मिला विद्यालय और अगेन अलावा आफ्ताब कॉस्मेटिक्स मीठा हेलो के तुस्ता मिला विद्यालय फैंसी कॉस्मेटिक्स मीठा हेलो के तुस्ता मिला विद्यालय दुबई कॉस्मेटिक्स मीठा हेलो के तुस्ता मिला विद्यालय जवाद कॉस्मेटिक्स साबिराबाद के हाथ तुस्ता मिला विद्यालय जी टीरी बाजोर के तुस्ता मिला विद्यालय जी और दे सरा सरा जना बिल्कुल अम्बीरी के लिए हाथ तुस्ता मिला विद्यालय करी साहब सरा जी और उसा शॉप एक सेंटर सरा जी देसी फाटोल प्रोडक्ट मौजूद है जी और तीसरा मंगल मेले के हाथ उससे मिला विद्यालय जी

0: दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम दिखाओ
2: बख्तावर तर बख्तावर वो मस्त।
3: अहमद भाई जहो हर वर्ष शिशत गोरम पर महमी वर्ष पर वर्ष दानी जातीगी नख को लाश्ता और न मिजड़ कीगी चे कोरना बाहर उजम
4: होरे है सबगान न दे पकार मखदानो द पारा इश्मा एक निड्राप इस्तेमाल का देर जरबदे महना दाने हतम शी और मखबदे सफा और कुल इखकारी
3: मनना अहमद भाई उस बा इश्मा एक निड्राप हम अहलम जवाड़म जिजमा मखदाने ना सफशी और खैस्तकारी। अहमद भाई दुकान पता उखाया
4: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल मिला।

जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुबह बरतारे खदर से दासो खिदमत केश मकस मेरे पाकिस्तान प्रोग्राम सर ओमिलर मसुम रहमी नवाल दिया खबर टिकटॉक फिट फाट खुशहाल सुकाल बबी आओ द सेहत व जमो के बबी तो लोमीना वालों था चरता चरता के मां बाज रदशी इश्मा कश्मीर पाकिस्तान प्रोग्राम की ओर तरजीह देर हर के लिए वही

0: Common Radio 88.4.
1: Your station.
2: दिल्ली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपनी बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग

0: सो सेफर दा बिल्कुल बीजीएम के रोसरा वो रो सेफर 927-291-292 दिलारी जी बिल्कुल नेक्स्ट कलर गो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जजाकला जी सो कुछ खबर की थी किम से ना लंडी जलंधर ना तड़ी मासी चूठी मार वगैरह ऐसा रहेंगे तो शादो हाय हाय हाय हाय होय होय होय मार वगैरह खाल दे रहा ड्रॉप सुशा सिग्नल इशू ग्यारह तक काल का वाला शाह जी नेक्स्ट कलर गुरु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू जी
1: वालेकुम
0: वालेकुम सलाम जी तो कैसा खबर की किम से ना उस्मान सर खबर है
1: उस्मान
0: रुचि प्रोग्राम सर उ
1: नजीर
0: में कोई सा
1: नजीर न लागी मुखरे सर के
0: नजर न लगी
1: अच्छा
0: नोट सरंगे जिंदगी
1: साधु माना
0: दुल्हो बारूम नस्ता दो बारूम वो शीशा चला बरूम न वकी गुंडी पसार ये ओ मजदिगार दाए सड़ा हवा चली जी चिब्याय नहीं आए ब्याह बुझियोता है कवे
1: बस लावरे दिन की डालाई
0: जी जी
1: वाह
0: ढेर फजरा फोरे वाह

जिरकी फटाके वंस अगेन हर रेडियो स्टेशन मनीष हो से परमिशन लेंगे राज भाई हाँ हाँ हाँ ओके जी रखी फटाके जहान में रखी फटाके वंस अगेन भाई शेख भरोसे थोड़ा सा दूसरे से औकात दिखाना है दुनिया में जो लोग सिर्फ अपने फायदे तक साथ निभाते हैं रखी भैया जहान मरना वंस अगेन रखी भाई से नन में दयार दा रतलो गक दे नन में दयार दा रतलो गक दे वो लाड़ गर्जम नास्ता खुन ना रखे ना डेर शा

बजे रखे फटके मन सके ना हंसे सर को मेरे जाना नारा सर को दे सीधा सवेरा। ओके रखे भाई ध्यान मनना, टाइम बहुत बहुत शॉर्ट है। रखी भटक वैसे निभा में सदी। ओके जी रखी भैयो जहान मनना है। थैंक यू सो वेरी मच। भाई जी सलाम लला बीजीएम खुदा से अर्था वाले के देखा ना अल्लाह के पेशावर था छे रामोने लला दाऊ आया कहना से हर मंगल तशो के भाई। अच्छा ओके जी मिसाल निसाल

ओके जी जी सलाम बिल्कुल जी वालेकुम सलाम जी साइलेंट सिस्टर आओ जी हर मंगल ते जे टाइम प्रोग्राम कौन छ 9 बजे पूरी निमगड़ी माजिगर नन कले कले बगीटा पे प्रोग्राम नन टपे बिल्कुल नन टपे माजिगर प्रोग्राम दे बगे वही लाला दा टबा में अखबला दा होता था नवा आया मां खफा न छे ओके जी खोर दे आबाद व्यादे बर्बाद छ और पूरा दे मसा जड़गी ठोला मानू ना मी साइलेंट सिस्टर ओके जी मौत बाबू वेले भी आए जी वे चितो था ना सही यो जहान मन नवाई जी वेलकम टू द शो वेलकम बाता नूर फ्रॉम वजीरिस्तान है सुन नवाई जी जरीन शो इज वेरी नाइस ग्रेट एंड हाउ आर यू सलाम टू ऑल यू सलाम टू ऑल लिसनर और साबिर वजीर ते आर के वजीर ते बख्ता अच्छा अच्छा बख्ता नूर यो जहान मन नवाई

0: आपका अपना रेडियो रेडियो मन 88.4 नेटवर्क
1: द आवाज दे द अमन। The आवाज दे द पाकिस्तान। The आवाज दे द रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: दाली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: द करक अनूर शोख खलकु द पारा द खुशाले खबर उस्तासो पा खपल खार करक के द डीरो गण बीमारो लका शुगर अरकुन निसा फालिज जोड़न बीमारी गुर्दो की कहानी त्रिख की कहानी बेओलादी बावसीर मैदी जख्म ब्लड प्रेशर लुगन लगे दल द वजूद सुस्ती प्रास्टेट दमला दर्द द जुड़न बीमारी और द जनानो नारिनो नूर पट औकार बीमारों पशमूल द हर मर्ज इलाज पा तसले सरा दियो तकड़ा काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टर सैयद जाकिर शाह बाचा से अपना खवलिश है। सूखची डीचमिस बीचमिस अरचिम्पी और नूर सनदुना तरला सकून की द पेखवर मशहूर होम्यो फिजिशियन दे द नूर मालूम द पारा पा दे नंबर राबेता उकड़े 0331-32-65-340 पता याद साथे पिशावर हेल्थ मेडिकल सेंटर मलिक सिंजित मखामख सिविक प्लाजा जेल चौक खरग।

0: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? कि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-93-32-580।
2: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत करार, बैक टू बैक हो या खबरें, रेडियो अमन लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।